0: वाह
1: मंगली ओ तेरी मैं खुदाई मंग ली।
0: क्या
1: लो
0: बात
1: जी
0: है
1: इसी
0: जी
1: सॉन्ग नंबर 1, सॉन्ग नंबर 2
0: जी
1: जी।

नातलियां की तेरे नाम दे सूरज उग दे रहे नी तो छुपना बन के मिल जानी रातानू तड़के उठ के सतिए

पासे खुदाइया सबे चलिए ता एक कर्म कमानी कड के कोई वैर जावी चलिए ता एक कर्म कमानी।

मैं सदा तेरे नादार उड़ा रेहानी निकल गया दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया दारोड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मेरे कुप हनेरे नू कर

कर करके मैनू याद, रोया करेंगी तू, हाय कर करके मैनू याद। बदलां दे विच, बदलां दे विच चन्नी जदों मुस्कुरा।

0: तो बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है।
1: वाह जी
0: और फिर
1: वाह जी वाह।
0: उमंग

शायर, गायक दोस्त जोगिंदर पाल मल जी नूं। जोगिंदर पाल मल जी इस बार साडी गौंदी शाम प्रोग्राम दे विच इंग्लैंड वसदे शायर तारा सिंह कुकड़ पिंड वालियां दा एक गीत लै के हाजिर हो रहे ने। तारा सिंह जी जिथे कि इंडियन वर्कर एसोसीएशन नाल जुड़े हुए ने, उत्थे नाल दी नाल जिहड़ा ओह जिहड़ियां कवितावां भी लिखदे ने, उन्हां दीआं कविता दीआं दो किताबां भी आ चुकियां ने। ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮੱਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮੱਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੌਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात लेंदे

मारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले। तारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले।

0: मुड़ नानियों दा पंजाब दिल्ली ए।
1: रेडियो दे प्यारे श्रोते हुणे तुसीं प्रोग्राम गाउंदे शाम दे विच सिमी सोधरा जी दी आवाज दे विच उहनां दी इक दिल्ली नूं जिहड़ी ललकार सुणी है, ते इसे प्रोग्राम दे आगाज दे हुण असीं तुहाडे सन्मुख पेश कर जा रहे हां न्यूजीलैंड रहिंदे साडे गायक ते जिला शहीद भगत सिंह नगर की तहसील बंगा तो पत्रकार हरमेश भारती जी दे पुत्र हरप्रीत सिंह जी जिहड़ा कि उत्थे पढ़ गया है, ते नाल दी नाल ओह गाउण दा जिहड़ा आ अपना शौक भी पाल रहा है, ते अपनी रचना लैके ओह हाजिर हो रहा है प्रोग्राम गाउंदा गाउंदी शाम दे विच। ते हरप्रीत जी तुहाडा प्रोग्राम गाउंदी शाम दे विच निघा स्वागत है। रेडियो दे प्यारे श्रोतिओ प्रोग्राम गाउंदी शाम दे विच हुण असीं जी इस गायक नूं सदा देण जा रहे हां मेरी मुराद है रिंकू शाह दीवाना तो ओह हुशियारपुर जिले दे शहर गढ़दीवाला नाल संबंध रखदे ने। रिंकू जी ने पिछले समें दे विच एक ऑनलाइन गीत मुकाबले दे विच हिस्सा लिया सी, ते इस गीत मुकाबले दे ओह फाइनल दे विच पहुंचे सन, ते इस प्रोग्राम दे विच जाने के साड़ी गाउंदी शाम जिहड़ी प्रोग्राम दे विच ओह अपना एक गीत लैके हाजिर हो रहे ने। रिंकू शाह दीवाना जी तुहाडा दुआबा रेडियो दे प्रोग्राम गाउंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
2: हैलो जी, सत श्री अकाल। मैं तुहाडा अपना सूफी सिंगर रिंकू शाह दीवाना शहर गढ़दीवाला तो बहुत बहुत धन्नवादी हां दुआबा रेडियो जिन्हां ने इस नमाने जे कलाकार नूं श्रोतियां दे रूबरू होण दा मौका दिता। सूफी रंग आप दी नजर पेश करन लगा हां। उन्हां पीरां फकीरां दी सरकारां दी गल आप दी नजर जिन्हां नूं बहुत ही अच्छे शायर साडे दुआबे दा माण श्री सुखजीत जी झांसा वाले उन्हां दा लिखिया है। आस करदा हां कि बहुत सारा प्यार देवोगे।